0: अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्ज हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। रेडियो अन्नपूर्ण 93.4 मेगाहर्ज।
1: तपाईं यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: रेडियो अन्नपूर्ण 93.4
1: रंग बहार
2: वर्जर संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
1: वर्जर पेंसले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्
2: साथै 65 इन्च को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि घर रंगाऊ खुशी बनाऊ उपहार जित्ने अवसर पाऊ
1: वर्जर पेंसले

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
0: वर्ष पेंस के घर रंग लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जितने मौका पाने
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बड़ी आकर्षक उपहार घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जितने अवसर पाओ
0: वर्ष पेंस

0: গুগল বাৎসল্য পোখরা ক্লিনিক নিউ রোড পোখরা ফার্টিলিটি হোপলাইন 01-597-0611
1: सहारा बहुमुखी प्राविधिक शिक्षालय गौड़ा को मुख भद्रकाली चौक पोखरा में डिप्लोमा इन प्राविधिक स्वास्थ्य सहायक हेल्थ असिस्टेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन को उच्च गुणस्तरीय पढ़ाई शीघ्र संचालन हुँदैछ। संपर्क 9856033405 9856033405
2: के तपाई यूके यूनिवर्सिटी को द मोस्ट प्रेस्टिजियस येट अफोर्डेबल डिग्री पोखरा में लिन चाहनुहुन्छ? नेपाल के प्रतिष्ठित इनोवेट नेपाल ग्रुप आईएनजी द्वारा प्रवर्तित फिशनल माउंटेन कॉलेज में यूनिवर्सिटी अफ वुल्वरहैम्पटन यूके संघ को साझेदारी में बीएससी ऑनर्स साइबर सिक्योरिटी र बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में भर्ना खुल्यो। पोखरा के उत्कृष्ट फिजिकल एंड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर र मैनेजमेंट सहित वातावरण में अध्ययन गर्न संपर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क फिशनल माउन्टेन कलेज मुस्ताङचोक पोखरा। फोन नम्बर 9802-85-1717 9802-85-1717।
1: पद्मश्री हस्पिटल एंड अलाइड साइंसेस प्राली न्यू रोड पोखराले विभिन्न प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलाचन, डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
4: हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, डाक्टर पविन थापा, डाक्टर सुभाष गुरुङ,
5: जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जन डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्माया पोन,
5: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेजबहादुर गुरुङ,
4: क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि शेर्चन, फिजिसियन तथा पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी,
5: पेट कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर शंकर बराल,
1: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला रोग प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर प्रकाश छेत्री, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर जुजु राज श्रेष्ठ, नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर मानकाजी थापा मगर, प्लास्टिक सर्जन डाक्टर पियूष गिरी, छाला विज्ञान भेनेरियोलोजी तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले, नाक कान घाँटी तथा थायराइड रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास गुरुङ, कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ, कन्सल्टेन्ट एनेस्थोसियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, डाक्टर विशाल गुरुङ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर अनुमोल पौडेल,
6: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, इको, टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलिसिस सेवा र आँखोपचार सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
3: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्राली पोखरा 9 न्यू रोड, फोन 01-5901-62 5901-63।

0: रंग बहार रंग बहार
1: वर्जर संगे उपहारे उपहार बंपर मा यामाहा रेजियार
0: वर्जर पेंट से घर रंगा उन्होंस प्रा लकी ड्रॉ मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बंपर उपहार जितने मौका पाउन होस
1: साथ ही 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार रुपनी घर रंगाओ खुशी बढ़ाओ उपहार जितने अवसर पाओ
0: वर्जर पेंट

0: Thank you. सिकंदर को इतना कुछ कभी नहीं देखा। माँ कहती थी वो फरिश्तों से बातें करता है।
1: मैं फरिश्ता नहीं हूं।
2: कुछ है, कुछ तो है, कुछ

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट्स सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाऊ है रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला साँझको छ बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुन चाँदी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुहोस् अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय। 93.4

पैसा थी दो धर्म परे के गर्नु के गर्नु देखाउने माया भगाउने माया कुन चाहिँ पत्याउनु धनी छु के

0: গুগল। বাৎসল্য পোখরা ক্লিনিক, নিউ রোড, পোখরা। ফার্টিলিটি হেল্পলাইন 01-597-0611।
1: হ্যালো, কি ছ তেরো খবর?
2: ঠিক ছু ইয়ার, সঞ্জয় ছস?
1: সঞ্জয় ছু। আব ভিসা লাগে পছি তো পার্টি দিনে হলা নি?
2: পার্টি তো দিন হুন্থ্যো, কিনমেল গর্ন বাকি নাই ছ ইয়ার।
1: मैले त सबै किनमेल गरिसके। अब बेडसिट, सिरक र दुई चार थान टप्स कुर्ती किन्नु छ।
2: मैले पनि किन्नु छ के, सँगै किनौ न।
1: तिमी जाने अस्ट्रेलिया, म क्यानाडा यार।
2: सबै ठाउँको बेडसाइज अनुसारको बेडसिट पाउने ठाउँ छ क्या किनमेल संसार, हो त्यही जाम न।
1: ए मैले पनि खुब सुनेको छु किनमेल संसारको बारे। ब्रान्डेड ब्रान्डेड तन्न पाइन्छ त्यहाँ।
3: विदेश लैजान तथा पठाउनका लागि भ्याकुम प्याक गरिन्छ, साथै भ्याकुम ब्याग पनि उपलब्ध छ। जुनसुकै ब्रान्डका आकर्षक तन्ना सेट, सिरानी, कुशन, सिरक, ब्ल्याङ्केट, ब्ल्याङ्केट कभर, बेड कभर, दिवान सेट, डोर सेट, समर ब्ल्याङ्केट, कुशन कभर, टावल, कुर्ता, टप्स पाइने एक मात्र ठाउँ किनमेल संसार, गैरापाटन, पोखरा। प्राइम सहकारीको भवन, कुमुदिनी होम्स स्कुलदेखि 50 मिटर पश्चिम। मोबाइल 9856031412, 9864667887।
4: तन्ना आजै फेरि हाल्नुहोस्।

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

भगवान आदित्य की उपासना से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का अंत हो जाता है, शारीरिक रोगों का शमन होता है और अनेक प्रकार के दुख और शोक से प्राणी को मुक्ति मिलती है। भगवान आदित्य को तीनों लोकों और 14 भवन का स्वामी कहा जाता है।

कश्यप मुनि के अंश और अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही भगवान सूर्य आदित्य कहलाए। इनके 12 स्वरूपों का वर्णन मिलता है जो क्रमशः इस प्रकार है। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भगवान, विवस्वान, विष्णु, अंशमान, वरुण तथा मित्र। भगवान सूर्य अपने पहले स्वरूप से देवलोक में शासन करते हैं, दूसरे से प्रजा की रचना करते हैं, तीसरे से मेघों की व्यवस्था, चौथे से जगत पालन, पांचवे से औषधियों को रोगनाशक शक्ति देते हैं, छठे से प्राणों का नियंत्रण, सातवें से धरती की व्यवस्था, आठवें से अग्नि पर नियंत्रण, नवें से प्रायः अवतार लेते हैं, दसवें से सुख वैभव देते हैं, ग्यारहवें से जल में जीवनी शक्ति भरते हैं, बारहवें से चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित रहते हैं, ऐसा शास्त्र मत है। इनके साथ ऋषि, अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सर्प प्रत्येक मास में अलग अलग इनके साथ रहते हैं। ऋषि लोग स्तुति करते हैं, अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हैं, गंधर्व संगीत अलापते हैं, नाग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की बागडोर संभालते हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं। इसी से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल थल नभ तीनों में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। मौसम, प्राणी, प्रकृति, वनस्पति सब सूर्य पर ही आधारित लक्षित होते हैं। भगवान सूर्य 12 महीनों में किस प्रकार विद्यमान रहते हैं, शास्त्रों में वो इस प्रकार कहा गया है। चैत्र मास में भगवान सूर्य धाता स्वरूप हैं। इस समय अपनी सभी किरणों में वे प्रकाशित होते हैं। इनके साथ पुलत्स्य ऋषि, वासुकी नाग, रथमृत नामक यक्ष, ऋतुस्थला नामक अप्सरा, हेति नामक राक्षस तथा तुम्बरु नामक गंधर्व रहते हैं। वैशाख के महीने में सूर्य अर्यमा स्वरूप होते हैं, जो अपनी 300 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, नारद नामक गंधर्व, पुंजेश्वत्थला नामक अप्सरा, प्रेहित राक्षस तथा कच्छवीर नाग रहते हैं। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य मित्र स्वरूप होते हैं, जो अपनी 200 किरणों से चमकते हैं। इस मास में इनके साथ आत्रि ऋषि, रथस्वन यक्ष, हाहा गंधर्व, मेनका अप्सरा, तक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस आदि रहते हैं। आषाढ़ में सूर्य वरुण रूप होते हैं। 500 किरणों से सुसज्जित वशिष्ठ ऋषि, हुहू नामक गंधर्व, सहजन्या अप्सरा, नागराज तथा रथ नामक राक्षस और रथचित्र नाम के यक्ष के साथ होते हैं।

श्रावण मास में सूर्य इंद्र स्वरूप होते हैं, अपनी 200 किरणों से प्रकाशित होते हैं। इस मास में इनके साथ ऋषि अंगिरा, विश्वासु नामक गंधर्व, प्रग्लेचा अप्सरा, एलापुत्र नामक सर्प, स्थ्योत्य नामक यक्ष तथा सर्प नामक राक्षस होते हैं। भाद्रपद महीने में सूर्य विवस्वान स्वरूप हो जाते हैं, अपनी 300 किरणों के साथ चमकते हैं। इनके साथ ऋषि भृगु, उग्रसेन गंधर्व, अनुम्लोचा अप्सरा, आपूरण यक्ष, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस होते हैं। अश्विनी मास में इनका स्वरूप पूषा होता है, अपनी 200 किरणों से ही चमकते हैं। इनके साथ गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुषेण गंधर्व, धनंजय नाग और वात नामक राक्षस होते हैं। कार्तिक में सूर्य पर्जन्य स्वरूप होते हैं, अपनी 1100 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ भरद्वाज ऋषि, विश्वाची अप्सरा, विश्वावसु गंधर्व, सेनजित यक्ष, ऐरावत सर्प तथा अन्य राक्षस होते हैं।

मार्ग शीर्ष में सूर्य अंशमान होते हैं जो अपनी 1500 रश्मियों के साथ चमकते हैं। कश्यप ऋषि, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व, तारशीर्यक्ष, महापद्म सर्प तथा विद्युत नामक राक्षस होता है। पौष मास में सूर्य का स्वरूप भगवान का होता है। कृतु ऋषि, पूर्वचिंती अप्सरा, अरणायु गंधर्व, ककोटिक सर्प, अरिष्टनेम यक्ष, स्फूर्ज राक्षस इनके साथ में होते हैं। माघ में सूर्य त्वष्टा स्वरूपी होते हैं, अपनी 1500 किरणों से चमकते हैं। जमदग्नि ऋषि, तिलोत्तमा अप्सरा, कंबला सर्प, ऋतुजित यक्ष, ब्रह्मोपेत राक्षस तथा धृतराष्ट्र गंधर्व होते हैं। फाल्गुन मास में सूर्य भगवान साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं। इनके साथ विश्वामित्र ऋषि, रंभा अप्सरा, अश्वतर नामक सर्प, सूर्यवचा नामक गंधर्व, सत्यजित राक्षस तथा यज्ञोपेत राक्षस होते हैं।